चिंतामिमन अरसलतुम कलन ब्यास समन वाली वसबी वर्तजानी सानस मखारखन बी यंजाइले यामन अमर सबील ईमान कुल्लुम बिअन्नुसुल मुख्तारिफी रुसुलिन